नच नारायण राग दे अधीन गुरु ग्रंथ साहिब विच एक होर राग स्वरूप मिलता है, वो है नट। असल विच नट नारायण राग नट दी ही एक प्रकार है, पर दोनों राग भिन्न अते स्वतंत्र राग हैं। जिथे गुरुदेव ने नट नारायण की वरतों कीती है, उत्थे स्पष्ट तौर ते नट नारायण महला चौथा पांचवा आदि लिखा है। नट नारायण का स्वभाव है काला, ये काल मिटदी है ना दे अमृत जल नाल। नाम नाल मन थिर हो जाएगा, नटखट नहीं रहेगा, नट नारायण दी थां नर नारायण ले लवेगा। खिन खिन नर नारायण गावे है, मुख बोले है नर नर हरे। मन दी स्थिरता ले नाम अमृत जल है, बाणी दे सार विच जिस नाल निस्तारा होना है। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। इस राग दे आरोह विच सत्ते सुर अते अवरोह विच धैवत अते गंधार वकल ढंग नाल लगदे हन। दोनों मध्यम लगदे हन। इस दे गोंग दा समय राग दा दूसरा पहर है। राग नट नारायण विच पहला शब्द मेरे मन सेब सफल हर काल, ले गुरपग रेन रवाल। गुरु रामदास जी पातशाह जी दी रचना। इस शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई परमजोत सिंह जी। दूजा शब्द सरवण करो भाई हरिंदर सिंह हरचरण सिंह जी फक्कर। गुरु अर्जन देव जी दी रचना है। उलाह नू मैं काहू न दियो। पहला शब्द मेरे मन सेव सफल हर का।

खालसा धर्म नहीं है, खालसा है पंथ। ते पंथ दा मतलब है राह, ते खालस दा मतलब है पवित्र। पवित्र राह दे उपर चलन वाला कोई महापुरख, कोई संत जन, कोई जग्यासु, जिसनु पूरे गुरु दी कृपा द्वारा इस राह दी सोझी हो जाए। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने इस दिया कुछ कुछ शर्तां दसियां, नियम दसे हन। वही गुरसिख दी डेफिनेशन की है, ओ लिखदे ने भी गुरसिख भलके उठ कर अमृत वेले सरना वंदा, इशनान करना, गुरु की बाणी दा जाप करना, फिर सत संगत विच आके गुरबाणी दा कीर्तन श्रवण करना, सेवा करनी, गुरसिख साध संगत दी सेवा करनी, दसवंध गुरु दी समर्पित कर देना, ते आपा भी गुरु दी समर्पित कर देना। साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह कहंदे हन, जेड़ा जागत जोत नाल जुड़िया होया है, जागदी जोत नूं हमेशा जपे, चिरंकाल सदीव काल हिरदे दे अंदर उस नूं धारण करे, उस नूं खालसा कहा जांदा है। ओ खालस हो जांदा है, शुद्ध ते नरोल हो जांदा है, जेड़ा संसार दे वहमां भरमां तों दूर हो जांदा। ब्रत गोर मड़ी मट भूल ना माने, जेड़ा इन्हां चीजां नूं ना मनदा होवे, जेड़ा तीर्थ दान दया तप संजम इन्हां नूं एक अकाल पुरख तों बगैर ना मनदा होवे, क्योंकि एक अकाल पुरख महाराज दे सिमरन तो बगैर बाकी दियां चीजां सारियां अधूरियां हन। ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह ने खालसे दी डेफिनेशन उपमा कीती है, कहिंदे खालसा मेरा ही रूप है ते मैं इस दे अंदर निवास करदा हां। जेड़ा खालस शुद्ध स्वरूप नजर आउंदा होवे, गरीब नवाज सचे पातशाह कहिंदे मैं उस दे चरणां दी खाक नूं लोड़दा। धन गुरु रामदास महाराज।

तू बेअंत को विरला जाने, को विरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा। तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया। तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब, मुन इंद्र महाशिव जो करी। तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा,

बड़ी उच्ची सोचनी है। अच्छा पंडित जी ए पत्थर इन्हां दे मुंह च खीर पा रहे हो खाणगे तनिया इंदनी आखी दा तैनू की पता तू तक सिर्फ जिम्मेदार है तैनू की पता के पत्थर नहीं हन होर की हन पंडित जी मेहनत पत्थर ही जाप देने नहीं तनिया ए पत्थर नहीं ए ठाकर हन पंडित जी ठाकर की हुंदा है तनिया मैं तेन किवें समझावा ए पत्थर नहीं जे तेन आखिया है जे तेरा मन ही मन गया है पत्थर नहीं ये ठाकर हन फिर तू आखदे ठाकर की हुंदा है ना पंडित जी फिर मैं दस के देवो ठाकर की हुंदा है तनिया ठाकर वो है जिस दे आसरे ते सारा संसार है। अच्छा जी फिर ठाकर की करता है तन्ना सवाल ते सवाल करे ठाकर कोलों जो कुछ मंगी मैं जो कुछ मंगिए देंदा है फिर तने सारा संसार ठाकर दे।

तुझी ठाकर ने सौ खाते में सो तुम ठाकर नहीं दिसदा तनिया मैनू नहीं दिसदा सच आखते हो हां तनिया सच आखदा ठाकर जी तुसी मैनू दिसदे हो इसका मतलब तुसी तलोचन भी दिसदे होवोगे नहीं तनिया मैं भैड़ियां खा वाले नहीं दिसदा जिन्हां दा मन होर भुख होर होवे मैं नहीं उन्हां दिसदा फिर भगवान जे तू मेरे कोल रहना है तो फिर तेन तरलोचन दर्शन देने पैणगे तनिया नहीं यह झूठा है फरेबी है मकार है हेरा फेरी करता है मेरे नां ते नहीं प्रभु जे ए ना हुंदा तो मैनू तेरे दीदार नहीं सी होने हुण हुण भगवान नू तन्ने के कारण करके तरलोचन नू भी दर्शन देने पे तरलोचन का भी दर्जा भगतां विच आ गया किहदे करके कृति ने संगत की संगत का दर्जा की होया फिर तन्ने ने मंगिया कि ऐना कुछ मंगया कोई भी संसारी ऐना कुछ मंग नहीं सकया एक ताजन तुरी चंगेरी करती कहे चंगी जंत ना ले दे मंगी पातशाह घोड़ी ओ होवे जिहड़ी किसे कोल ना होवे बिस्तरा ऐदा ना होवे जिहड़ा बादशाह नसीब ना होवे स्त्री एडी खूबसूरत होवे जद रोटी लैके आवे

राग माली घोड़ा। राग माली घोड़ा भारतीय संगीत दे अति अलप प्रसिद्ध जा प्रचलित रागानी वर्ग दा एक कठिन राग है। भारतीय संगीत दे प्राचीन जा मध्यकालीन ग्रंथा इथ तक कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे अंत विच अंकत रागमाला विच इस दा जिक्र नहीं आया। एक मत है कि राग मुसलमाना दी काढ़ है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच इस राग विच गुरु रामदास जी दे 6 शब्द, गुरु अर्जन देव जी दे 8 अते भगत नामदेव जी दे 3 शब्द उपलब्ध हैं। माली घोड़ा दा सुभा खुशी उपजाउणा अते काम क्रोध आदि दी मार तों बचण लई तैयार करना है। परमेश्वर दी दित्ती हर चीज नूं वर्तन दा वल आ जाएगा जे नाम दी टेक रखांगे अते खिन खिन राम नाम नूं ही नमस्कार करांगे। राग माली घोड़ा दे गौण स्वरूप विच ऋषभ अते धैवत कोमल मध्यम तीबर बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसका वादी स्वर ऋषभ अते संवादी पंचम है। गायन समा है दिन का चौथा पहर। गुरु अर्जन देव जी दे रचित 2 शब्द, पहला ऐसो सहाई हर को नाम अते राम नाम को नमस्कार गायन कर रहे हैं भाई प्रतिपाल सिंह जी इंदौर वाले अते भाई नरेंद्र सिंह जी। पहला शब्द सर्वन करो, ऐसो सहाई हर को नाम।

गौर करे अज मिला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया अज मिला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया मनो मचंदड़िया जे जाना मर जाइए कुम न आइए झूठी।

चलने चल हार बिचारा ले मनो चले चलन हार विचार ले मनो गंढे दिया छे मार तोड़े दिया चिट्ठी नो जिमें पूछे

लास करे जीवन पर कारण लोचन कछु न सोझे कह कबीर सुमरे प्राणी कह कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो।

हर जस रे मन गायले हर जस रे मन गायले जो संगी है तेरो असर बिचो जात है।

कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है, वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं

भूखे शेर को मांस मिल जाए, झपट पड़ता है। इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार है, रंग जहां जहां पर प्रभु ने लगा दिया वो वहीं लगे।

जिन जिन नाम ते आया तिन के काज सरे। दोज हु मेडिटेट ऑन द नाम द नेम ऑफ द लॉर्ड देयर अफेयर्स आर ऑल रिजॉल्व। हर गुर पूरा आराध्या दरगह सच खरे। दोज हु मेडिटेट ऑन द परफेक्ट गुरु द लॉर्ड इनकारनेट दे आर जज्ड ट्रू इन द कोर्ट ऑफ द लॉर्ड। सर्व सुखा निध चरण हर पौजल बिखम तरे। द लॉर्ड्स फीट आर द ट्रेजर ऑफ ऑल पीस एंड कंफर्ट फॉर देम। दे क्रॉस ओवर द टेरिफाइंग एंड ट्रेचरस वर्ल्ड ओशन। प्रेम भगत तिन पाइया बिख्या नाहीं जरे। दे ऑब्टेन लव एंड डिवोशन एंड दे डू नॉट बर्न इन करप्शन। कूड़ गए दुविधा नसी पूरन सच परे। फॉल्सहुड हैज वैनिश्ड ड्युअलिटी हैज बीन अरेस्ड एंड दे आर टोटली ओवरफ्लोइंग विद ट्रूथ। पार ब्रह्म प्रभ सेम दे मन अंदर एक तरे। दे सर्व द सुप्रीम लॉर्ड एंड एनश्राइन द वन लॉर्ड विद इन देयर माइंड्स। महादिवस मूरत भले जिस कौ नदर करे। द मंथ्स द डेज एंड द मोमेंट्स आर ऑस्पिशियस फॉर दोज अपॉन हुम द लॉर्ड कास्ट्स हिज ग्लांस ऑफ ग्रेस। नानक मंगै दरस्तान कृपा करो हरे। नानक बेग्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ योर विजन ओ लॉर्ड प्लीज शावर योर मर्सी अपॉन मी। जिन जिन नाम ते आया तिन के काज सरे।

सच प्याल जियो। राज में राजा जोग में जोगी तप में तपी श्री ग्रीष्म में भोगी।

0: लिया चित का भयो हमरो राम नित जिबी रही शरत चरणन में। मैं अपना सुत तो है निवाजा
1: अपना सुत तो है निवाजा
0: अंक पर जुड़ कर मैं पहुंचा जा जहां कहां।

महिमा न जाने भेद, ब्रह्मा न जाने भेद, अवतार न जाने अंत, परमेश्वर पा

0: अनेक रूप होए प्रगटिया
1: वाह अनेक रूप होए प्रगटिया
0: केड़े केड़े रूपां च आए आप

गुरु सवारी साध संगत जीओ, गुरु बख्शी फतेह। अर्ज कर रहे हैं, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बेनती है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अपार रहमत, अपार कृपा सदका साध संगत जी की अथाह श्रद्धा, पूर्ण मिलवर्तन अते संत बाबा सुच्चा सिंह जी की उच्ची सुची सोच सदका 9, 10, 11, 12 अते 13 अक्टूबर सन 1991 धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी पावन पवित्र हजूरी विच प्रारंभ होया अदुत्ती गुरमत संगीत सम्मेलन, जिस विच दुनिया भर दे मन्ने परमन्ने रागी सिंघा ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच अंकित शुद्ध 31 रागां विच रची गुरबाणी दा मनोहर कीर्तन करके लखूखां संगतां दीआं असीसां प्राप्त कीतीआं अते अपना जन्म सफला कीता। अदुत्ती कीर्तन दरबार विचों रिकॉर्ड कीते 31 रागां विच काट शब्दां दीआं 16 आडियो कैसटां दा सैट असीं पहली बार संगतां दी सेवा विच पेंट करदिआं परम आनंद महसूस कर रहे हां। इह सारा उद्दम अखंड कीर्तन दे सोमे श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर जी दी सेवा विच बड़ी निम्रता अते अतुट श्रद्धा सहित समर्पित कीता गया। असी हां साध संगत जी दे दासरे, गुरुद्वारा गुर ज्ञान प्रकाश जवद्दी कलां लुधियाना पंजाब इंडिया। इस लड़ी दा पहला राग श्री राग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी राग तरतीब विच श्री राग नूं प्रथम स्थान प्राप्त होया है। रागन में श्री राग पारस पखान है। श्री राग बड़ा पुरातन मधुर अते कठिन राग है। श्री राग नूं मुड़ सुरजीती दा राग भी मन्या गया है। इस राग विच ऋषभ अते धैवत कोमल लगदे हन, मध्यम तीबर अते बाकी सारे शुद्ध स्वर प्रयोग हुंदे हन। इस दा बादी रे ते संबादी पा गायन समा रात्रि दा प्रथम पहर है। इसे राग विच हुण सरवण करो 2 शब्दां दा गायन। पहला शब्द भगत रविदास जी दा उच्चारण कीता होया है। शब्द दी आरंभ दी तुक है तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा। इस राग नूं गायन कर रहे हन प्रिंसिपल बलदेव सिंह जी अते दूजा शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी दा उच्चारण कीता होया है। इस दी आरंभली तुक रंग रत्ता मेरा साहिब रव रहा भरपूर। इस शब्द दा कीर्तन कर रहे हन बीबी गीता कौर पेंटल जी। सब तो पहला शब्द प्रिंसिपल बलदेव सिंह जी दी आवाज विच जिस दी आरंभली तुक तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा।

धर्म धर्म का डेरा दूर नानक पूर रहा पर पूर मथे टिका तेर तोती कखाई हाथ विजक्त का साई नील वस्त्र पैर होए प्रवान मिले स्थाले पूजे प्राण और पाख्या का कुठा बकरा खाना चौंके पर किसने जाना देखे चौंका कटी कार ऊपर आए बैठे कुड़िया मत पिटे भी मत पिटे न सड़ पिटे हाँ।